आकाशवाणी से आप संभी रहा छो विविध भारती नो सूरत केंद्र 101.1 FM थोड़ी ज वार मा इटली के बराबर 6 वागे सांभरशो दिल्ली थी रिले हिंदी मा समाचार अने त्यार बाद भक्ति संगीत नो कार्यक्रम वंदन वार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार डांसिंग पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10 बजे अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11 बजे, 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर, कहानी पद्मश्री के अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट, उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा, उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला, इसका प्रसारण समय रहता है 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात 10:30 पर, और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेंबर म्यूजिक से लेकर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एसएल कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियाँ हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16 सेंचुरी में
1: जी
2: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ है 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, थ्री वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपने लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडी वेरी।
1: अच्छा।
2: ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
2: अब स्टडी वेरियस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी,
2: वो स्टडी वेरियस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
2: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
2: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
2: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
2: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे,
1: हाँ,
2: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
2: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
2: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह। हाँ।
2: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ, और उस जमाने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
2: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है,

0: दोनों जगह जो बजता है
1: जी,
0: वो क्या खास फर्क है?
1: देखिए, पश्चिम में जो ड्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लुकासस वगैरह
0: जी,
1: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ।
0: हाँ,
1: तार सप्तक की। और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्धहस्त अधिकार है,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
0: इनमें बहुत से स्टालवार्ड्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
1: अनडाउटेडली
0: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं, क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
1: बिल्कुल
0: वो अद्भुत है।
1: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
0: जी।
1: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी, और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
0: यहूदी मेनन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
1: बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी। उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
0: जी जी, आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया, इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जैन जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि
0: जी जी
1: जो भी कह लें उनके लिए कम है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक आपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप।

0: उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के वायलिन पर बजाई राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। लीजिए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति। फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हाय हाय हाय।
1: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

प्रिय श्रोताओं, हम लोग हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर। हम हैं राही प्यार की। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, राजकुमार फिल्म से, हर्षित जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। फिल्म का नाम कभी कभी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है। कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली

0: अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना। सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

संजय 7:45 मिनट पर इंद्रधनुष इनसे मिलिए अंतर्गत वीक मेकर अनवर पावस्कर ने बातचीत। रात 8 हवा माइल कार्यक्रम में हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखक शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी। रात्रि 9:10 पर आपके लिए कार्यक्रम आप सांभळशो 10 छाया गीत अने 11 रंग तरंग। आप સાંભળી રહ્યા હતા આજના દિવસ દરમિયાન પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની રૂપરેખા ઝરોખા અંતર્ગત।

0: वीर ज़ारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार की आवाजों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सलीम बिजनोई का लिखा गीत डब्बू मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे।

आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व नी। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकतानी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्य नी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक खुशखबरी
1: कहिए ना आ गया है।
2: सांभळो, शुं तमे पीएम सूर्यघर मफत वीजळी योजना विषे सांभळ्युं छे?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थमां सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। एटलुं ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु वीजळी पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मां वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो पीएम suryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अरे भाई तया सांभळ्यू, आपणे દરિયામાં હોઈએ તો આ ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી અને દેશની રક્ષા કરે છે।
6: ગુજરાત રાજ્યના દરિયા કિનારે કુલ 27 ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી સુરક્ષા માટે દરિયામાં સતત પેટ્રોલિંગ કરે છે અને આપણે પણ તપાસ દરમિયાન જરૂરી દસ્તાવેજો અને સાચી માહિતી આપી તેમને સંપૂર્ણ સહકાર કરવો જોઈએ। આપણને દરિયામાં કે કિનારે અજાણી બોટ, વ્યક્તિ કે શંકાસ્પદ હિલચાલ દેખાય તો તરત જ 1093 પર કોલ કરી મરીન પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ। આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: बदलो बदलो, आदत बदलो।
9: मशीन में कपड़ा नाखता पहला चेक नोता कर्या शू?
8: बदलो बदलो, आदत बदलो। हवे नजीकनी बैंक में जई फाटेली जूनी नोट्स बदलावो। जो बैंक ना पाड़े तो आरबीआई नी ओम्बुड्समैन ने फरियाद करो। आरबीआई कहे छे, जानकार बनो, सतर्क रहो।
10: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

whatever.

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या हो बंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान।

सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दानसिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दानसिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते

और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दानसिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा।

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारेलाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भूभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: जी हाँ दोस्तों, आप तो जानी तो अने मानी तो मन पसंद फोन इन प्रोग्राम
1: हेलो सूरत एफएम स्टिकी 101.1 सूरत एफएम।
0: हेलो सूरत एफएम स्टिकी, कौन बोलो छो?
2: हेलो केम छो?
3: हेलो सूरत एफएम स्पीकिंग
1: 101

कीजिए सूरत एफएम के साथ अपनी दिल की बात।

रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209। सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सूरत एफएम पर तो गुजरा हुआ जमाना आता है बार बार, थई जाओ सवार सुरीला समयनी पाखों पर, करिए गुजरा हुआ जमाना नी सुरीली सफर।
2: सोमवार थी शुक्रवार
1: सांजे 6 कलाके
3: ऑन सूरत एफएम 101.1 तेमज न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध।

0: तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: फैंटास्टिक फन फॉर फैमिली।
3: 101.1 मेगाहर्ट्ज़ सूरत एफएम।
4: આ જિંદગી પણ પાણી જેવી છે, વહે તો ધોધ છે, ભેગું કરો તો હોજ છે, જલસા કરો તો મોજ છે, બાકી પ્રોબ્લેમ તો રોજે રોજ છે। એટલે જ કહું છું, તમારા સમયને થોડો સમય આપો, એ આપેલો સમય જ તમારો સારો સમય લાવશે। આ આકાશવાણી છે ને આપ સાંભળી રહ્યા છો વિવિધ ભારતીનું સુરત કેન્દ્ર 101.1 FM। સમય થયો છે ઇન્ફોર્મેશનની સાથે એન્ટરટેનમેન્ટનો, એટલે કે સુરત સિસલર પ્રોગ્રામને માણવાનો, આપની રેડિયો દોસ્ત વિશાખા સાથે। તો મિત્રો, સુરત સિસલર પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ આ ગીત સાથે, ફ્રોમ ધ મૂવી દિલ્હી 6, મોહિત ચૌહાણનો અવાજ, મ્યુઝિક કમ્પોઝ બાય AR રહેમાન એન્ડ લિરિક્સ પ્રશુન જોશી।

कीजिए सूरत एफएम के साथ अपनी दिल की बात।

0: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
1: सुबह जराओ शाम जराओ
2: देव दर्शन थूप।
3: भगु दरिये जाय छे तो भूले चुके पण IMBL नजीक जातो नहीं हो, त्या माछीमारी करवी गुनो छे, खबर छे ने?
4: हाँ बापू, मने खबर छे के पाकिस्तान IMBL ओळंगी ने माछीमारी करता आपणा माछीमारोनु अपहरण करी तेमने जेलमां पूरी दे छे, अने आपणी बोटनो उपयोग आपणा ज देश विरोधी प्रवृत्तिओमां करवामां आवे छे।
3: अने क्यारे कोई शंकास्पद व्यक्ति के वस्तु देखाय तो 1093 पर गुजरात मरीन पोलिस ने जाण करजे।
5: आपणी सजागता ने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी, गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहितमां प्रसारित।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
8: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
9: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: फैंटास्टिक फन फॉर फैमिली।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सूरत में हो या सूरत से दूर,
3: सूरत FM 101.1 के आपके पसंदीदा कार्यक्रम
2: कभी नहीं रहेंगे आपसे दूर।
3: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप के जरिए
2: हमेशा आपके साथ। फैंटास्टिक फन फॉर फैमिली।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

0: ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। ये पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
3: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
4: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
3: बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई अने इटले ज आ चार रंग याद राखजे लीलो डब्बो भीना कचरा माटे।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

0: जाएगा।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए।
3: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
4: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
3: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केर माटे काळो रंग छे ने एकदम सिंपल।
5: गुजरात ना शहरो ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
6: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
5: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
3: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
5: एटले?
3: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
5: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: GI problem is education, nutrition, एक्सरसाइज एंड वेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है, यानी मैंने जो इबारत लिखी है, दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है, जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है। और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं, वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है, उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है, तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे, तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संग जीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

इबारत हमें लिख भेजी है, मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए। है

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी, मथुरा, थाईलैंड, फुकेट, दुबई, यूएसए, नायगरा फॉल, पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं, किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

0: लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री

0: के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम दो दिल।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेटा, दाल माँ मीठा नहीं जग्या है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
3: अरे मम्मी, आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
2: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे काळो रंग छे ने। एकदम सिंपल,
4: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
5: पापा मम्मी, जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
4: वाह, एकदम फर्स्ट क्लास।
2: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
4: एटले?
2: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस, रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
4: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
7: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार, हमारी बहुत सारी सखियां समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की, एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज को गाते हैं तो बड़ी दिल से आवाज निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की ये जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि पांचवी कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो, और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में पांचवी कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के जमाने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी, और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहां उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की, और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी
0: और वो श्रेणी की कलाकार
1: थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं, और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीरा जदियो और देवारा जारेजू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं, तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके की फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी, कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल.
0: सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए. जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है. और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है. ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए.
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत
0: है।
1: सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं. तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे इन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन. और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए.
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल. और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया.
0: जी
2: अरे भाई तया सांभळ्यु, आपणे દરિયામાં હોઈએ તો આ ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી અને દેશની રક્ષા કરે છે.
3: ગુજરાત રાજ્યના દરિયા કિનારે કુલ 27 ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી સુરક્ષા માટે દરિયામાં સતત પેટ્રોલિંગ કરે છે, અને આપણે પણ તપાસ દરમિયાન જરૂરી દસ્તાવેજો અને સાચી માહિતી આપી તેમને સંપૂર્ણ સહકાર કરવો જોઈએ. આપણને દરિયામાં કે કિનારે અજાણી બોટ, વ્યક્તિ કે શંકાસ્પદ હિલચાલ દેખાય તો તરત જ 1093 પર કોલ કરી મરીન પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ. આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી. ગુજરાત મરીન પોલીસ.
4: બેટા, દાળમાં મીઠાની જગ્યાએ ખાંડ પડી જાય તો કેવું લાગે?
5: અરે મમ્મી, આખો સ્વાદ બગડી જાય.
4: મેં તો મિક્સ થોડી કરાય.
5: બસ એવો જ કચરાનો છે.
4: ભીનો કચરો, સૂકો કચરો, સેનિટરી વેસ્ટ અને સ્પેશિયલ કેર ક્યારેય મિક્સ ના કરાય. અને એટલે જ આ 4 રંગ યાદ રાખજે. લીલો ડબ્બો ભીના કચરા માટે, વાદળી સૂકા કચરા માટે, લાલ સેનિટરી વેસ્ટ માટે અને સ્પેશિયલ કેર માટે કાળો રંગ. છે ને એકદમ સિમ્પલ.
6: ગુજરાતના શહેરોને સ્વચ્છ રાખવા ઘરે જ કચરાનું વર્ગીકરણ કરો. 4 કચરાપેટીનો નિયમ અપનાવો અને કચરાના કલેક્શનની ગાડીમાં જ કચરો આપો.
7: પપ્પા મમ્મી, જુઓ મારો રિપોર્ટ કાર્ડ, હું ક્લાસમાં ફર્સ્ટ આવી.
6: વાહ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ.
4: પણ હવે વારો આપણા શહેરના રિપોર્ટ કાર્ડનો છે.
6: એટલે?
4: અરે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ચાલે છે ને, આખા દેશમાં સફાઈનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, અને એટલે આપણે આપણા કચરાનું વર્ગીકરણ કરીએ અને કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખીએ, રિડ્યુસ, રીયુઝ અને રિસાયકલની આદત પાડીએ અને સિટીઝન ફીડબેક આપીને આપણા શહેરને ફર્સ્ટ લાવીએ.
6: આપનું શહેર સ્વચ્છ શહેર. સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન ગુજરાત દ્વારા જનહિતમાં જારી.

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारी श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि उनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग

0: पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती
1: लेकिन
0: हैं।
1: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं।
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: हाँ, जो
0: जिन्हें
1: उनको
0: कभी
1: हुए
0: पछतावा हो।
1: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु माने जाते हैं और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज एक
0: ये
1: और
0: जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे
1: हाँ,
0: पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती
1: हाँ,
0: है और लंगर यानी कि जो भोजन
1: लंगर होता
0: है उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल।
0: जाती
1: और लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो
1: बिल्कुल
0: सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले
0: पहले गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ, पत्थरों को है मालूम।

0: अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए, क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही होता
4: है, ये तो
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं।
4: तो है,
3: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में

0: करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी गोली छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरो ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।
4: આ આકાશવાણી છે ને આપે ટ્યુન કર્યું છે 101.1 સુરત FM. પ્રસ્તુત છે પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ લમ્હે.

नमस्कार शानदार श्रोताओं, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के

बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो, और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार स्वीकार और सुरक्षित महसूस करता है। एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी
पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक
0: अरे
1: टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सीपी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते

0: और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी
0: है।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे को रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-68 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ।
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की, बाल वाले रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समान, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक सर, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया चलते।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख।
0: हाँ।
1: वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पाउंदे ने। बस इतनी दो लाइन बोलेंगे
0: जी। जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: चलता है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए आज मुझे, फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मंगल पोरा श्रीनगर से जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका
1: जी।
0: और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के
1: हाँ
0: मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी
1: हाँ
0: मेहनत लगती
1: जी,
0: है,
1: मैंने
0: कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, ये कौनी जामा होता है, ये मतलब महंगा ही होता है, ये 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है
0: जी जी
1: ये, मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम। बिल्कुल,
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है उसमें, फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा मतलब उसमें
0: वो जो
1: लगाते हैं,
0: डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना? अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार की
0: क्या
1: आवाज़
0: बात
1: में
0: है,
1: सॉन्ग।
0: बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं,
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी,
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे,
0: हाँ।
1: लेकिन ये पक्षी है हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: अभी
0: हाँ
1: बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता होगा।
1: बिल्कुल ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव
0: हाँ
1: में भी
0: हाँ
1: रहते थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब,
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा।
1: वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गौरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल, आज नहीं तो चकली का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में, मेरा
0: हाँ
1: गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है,
0: हाँ
1: अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
1: जी। जी
0: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है,
0: हाँ
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है, ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर
1: नहीं,
0: के?
1: नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है।
0: जी, और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारी का बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती है, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीहा जिला के विधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है
1: जी
0: आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम हैं,
1: जी
0: कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ,
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात है
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी।
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन की गुठलियां होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सब्जी के जो छिलके होते हैं
1: जी,
0: उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: जी। और हमारे इधर तो हम लोग गांव में हैं तो घर में जैसे कि गाय हैं, भैंस है, तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए, खेतों के लिए डालते हैं
0: ये तो बहुत बढ़िया
1: खाद के
0: खाद
1: रूप
0: होता
1: में।
0: है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी
1: जी
0: होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपके
1: जी
0: गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की, बताइए? कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम
0: तो
1: लोग।
0: आपके
1: जी
0: यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ
1: होता था जब
0: करता था?
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
0: चक्की जात वगैरह,
1: उसमें।
0: चक्री है ना?
1: जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।
2: मैं

तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से।

0: के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल

0: ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।

0: छाए गीत में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराए।
1: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मा फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मा सफाई नू अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मा ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनू शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा जारी।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाती।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए,
1: मैं तो मिक्स थोड़ी कराई। बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराए। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी माज कचरो आपो।
4: पप्पा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मा फर्स्ट आवी।
3: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
3: एटले?
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मा सफाई नू अभियान चाली रह्यू छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मा ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। चाय की चुस्की के साथ शाम की महफिल सजाने पेश है आपके लिए कार्यक्रम तराने नए पुराने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

तराने छेड़ रहे हैं ख्वाबों का फसाना। सुनिए तीन देवियां फिल्म से ये गाना, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ख्वाबों से निकल कर आ बैठी है मोहब्बत हकीकत में, जानिए कैसे। कर्मयोगी फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में वर्मा मलिक के बोल इस गाने का म्यूजिक तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गाना अजनबी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में समीर के बोल, संगीत अनु मलिक का।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम मकाब, बम बम अरे बम बम।
3: जिंदगी के स्कूल में जब लिख जाता है मोहब्बत का नाम, तो लाइफ की फिलॉसफी कुछ ऐसी हो जाती है।

0: चलती का नाम जिंदगी, इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में, नूर देवासी के बोल और किशोर कुमार का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे

0: मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए

0: ये मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।
1: झरोखा बाद माने गुजरा हुआ जमाना कार्यक्रमनो शेष भाग। विज्ञान कहे छे के बे विरुद्ध परिबड़ों एक बीजा तरफ आकर्षाय छे। एज रीते वधु सारी दोस्ती माटे विरुद्ध स्वभाव जरूरी बने छे। गुलजार एटले शांत अने गंभीर व्यक्तित्व अने पंचमदा एटले अल्लड़ स्वभावधारी मनना राजा। आ बन्नेनो संबंध एटले एवी दोस्ती के जेमां क्यांय कोई पण प्रकारनो पड़दो नहीं, कोई संकोच नहीं। गुलजारना शब्द न गमे तो आरडी बर्मन एनी धून बनावानी चोखी ना पाड़ी दे। आवा ज एक वातचीत जेवा जणाता गीतमां पंचमदाए गुलजारनी हाँसी उड़ावी, पण आशाजीए ए शब्दोने गणगणाव्या जे पंचमदाने गमी गया। परिणामे आपणने मळ्युं एक मजानुं यादगार गीत, जेमां 116 चांदनी रातनी जे वात छे ए गुलजार पंचमनी खास दोस्तीना એ વખતે થયેલા દિવસોની સાક્ષી પૂરે છે।

0: आकाश इतना छोटा तो नहीं और इतना थोड़ा भी नहीं, सारी जमीन ढांप लेता है, मेरा इतना सा आंगन क्यों नहीं ढांप लेता। दोपहर होने को आई और एक आरजू धूप से भरे आंगन में छांव की छींटे फेंकती है और कहती है, ये आंगन मेरा नहीं, यहां तो बस पांव रखने को छांव चाहिए मुझे, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे उस घर जाना है जिस घर मेरा आसमान रहता है, मेरा आकाश बसता है।
1: आहतु फिल्म सितारानु गीत। मित्रों, मात्र संगीतनी धुन बने के मात्र शब्दों लखाय तो एक गीत के धुन आपणा अंतर सुधी पहुंचे खरा? ना। एज रीते गीतकार गुलजारना शब्दों, आरडी बर्मननु संगीत अने विविध गायकोना स्वरोनो त्रिवेणी संगम एटले ज आपणा अंतरात्मामां अड्डो जमावी बेसता सुमधुर गीतो। आ त्रिपुटीना शब्द सूर अने स्वरना घणा रियाज पछी बनेला रूहानी गीतों पैकीनू ज वधु एक गीत एटले फिल्म किनारानू गीत, जे द्वारा कोईपण कलाकार कही जाने कही रह्या छे कि नाम खोवाई जशे पण अमारू काम हमेशा अमर रहेशे। शब्दों अने आर डी बर्मनना संगीत साथे सांभळे लता मंगेशकरना अने भूपिंदरना स्वरो, गुलजारना शब्दों।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।
1: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व नी। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता नी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रहू छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।
2: સાંભળો છો, દરિયો ખેડવા જાવ છો તો ટોકન તો લીધું છે ને?
3: હા હા, યાદ રાખીને લીધું છે। મને એ પણ ખબર છે કે જે વ્યક્તિના નામનું ટોકન હોય તે જ વ્યક્તિ દરિયો ખેડવા જઈ શકે છે। બીજા કોઈના નામે દરિયો ખેડવા જવું એ સજાપાત્ર ગુનો છે, અને એમ કરવાથી માછીમારીનું લાયસન્સ કેન્સલ થઈ શકે છે અને ડીઝલ પર મળતી સબસિડી પણ બંધ થઈ શકે છે।
2: એ ધ્યાન રાખજો કે શંકાસ્પદ બોટ, વિદેશી કે અજાણી વ્યક્તિ દેખાય તો તરત જ 1093 પર મરીન પોલીસને જાણ કરવી।
3: હા મારી માં, કાયદાનું પાલન કરીશ અને ટોકન લઈને જ દરિયો ખેડવા જઈશ। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

है पते पे पता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

0: 个了，
1: 叫
0: 个个个个个个个个个，鬼不得你还不打，鬼不得你还不打，
2: 鬼不得你还不打，鬼不得你还不打。

आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से ये गाना, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गाइड फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म से ये गाना, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ઓલા ચીમનની વાત સાંભળીને
4: માછીમારી કરતા એને દરિયામાં બેનામી નશીલા પદાર્થોની જાણ તુરત જ મરીન પોલીસને કરી દીધી।
3: ગાંજો, અફીણ, કોકેન, એમડીએમએ જેવા નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવાના ગુનાઓમાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનેગાર વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી અને ધરપકડ થઈ શકે છે, અને આપણને કોઈને પણ દરિયામાં કોઈ શંકાસ્પદ બોટ, વિદેશી કે અજાણી વ્યક્તિ કે બેનામી ડ્રગ્સ નજરે ચડે તો ચીમનની જેમ તરત જ ગુજરાત મરીન પોલીસને 1093 પર જાણ કરવી। આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત।

पर। अरे ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

से मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरत

0: अति अच्छे खूबसूरत बाल नहीं हैं, तो आज के जमाने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहाँ तक बात है, मैं हूँ रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के जमाने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी के यहाँ मसा लगा दो उसके मुंह पे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आंख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा, एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा वहाँ से, कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ।
0: 33 साल?
1: 33 साल मेरी उम्र है, 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख रहा
0: हूं। हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर भी।
0: हाँ।
1: आपकी जो सच्ची लगन थी वही आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य।
0: अभी भट्टाचार्य
1: बहुत पुराने एक्टर थे।
0: हाँ, करेक्ट,
1: बंगाल के थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूछ लेकर पहुंच गया था, तो मेरी उम्र उस समय बड़ी छोटी सी थी, और वो मेरे को देखते रह गए, बोले बेटा किसने बनाई है? बोला मैंने बनाई है। तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लगा के दिखाओ। तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नजदीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नजदीक गया था। और जब मैंने वो मूछ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी, मगर उनको मालूम पड़ गई थी। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं, ताकि उनको मालूम है बच्चा है, हिम्मत हार जाएगा। तो अभी भट्टाचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी लगाई आपने मुझ, और बहुत अच्छी बनाई आपने। जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला।
0: मतलब उन्होंने एनकरेज किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है ही नहीं हो, मगर उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था, वो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, समझ लीजिए आज आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
0: चलिए बहुत।
1: अगर किसी की विग नहीं बनी तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूं, किसी की दाढ़ी नहीं बनी तो किसी की मूंछ बना दिया हूं, अगर और कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया होगा।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप, या मूंछ, दाढ़ी, जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: वैसे नायलॉन की भी बनती है, मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। असली बालों से जैसे वीक बनती है या दाढ़ी मुझ बनती है, उसके बाद ही कुछ और आती, लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
0: तो कहां से आपको वो नेचुरल बाल?
1: उसमें एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की ये खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको। वहां पर ऐसी
2: आकाशवाणी समाचार 44 जोशी वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। ફાન્સમાં વિવાટેક 2026 સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, જ્યાં પરંપરાગત અભિગમો નિષ્ફળ જાય છે ત્યાં નવીનતા ઉકેલો પૂરા પાડી શકે છે। પ્રધાનમંત્રી આજે પેરિસમાં ફ્રેન્ચ ઉદ્યોગના અગ્રણી નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી। 52 ભારતીય સંસ્થાઓએ ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2027માં સ્થાન મેળવ્યું। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने नीट यूजी परीक्षा की तैयारी मूल्यांकन करने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केन्द्र सरकार नाणकीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर की वु ग्रामीण रस्ताओं निर्माण करते और भारत की मीनाक्षी हुडा विश्व बॉक्सिंग कप 2026 क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए कहुत कि ज्यां परंपरागत अभिगमों निष्फल जाए त्यां नवीनता उकेलो पूरा पाड़ी शके। फ्रांस में पेरिस में विवाटेक 2026 समिट ने संबोधता प्रधानमंत्रीए डिजिटल चुकवणी, नाणकीय समावेश, शिक्षण, आरोग्य संभाळ अने कृषि जेवा क्षेत्रों में भारतना झड़पी टेक्नोलॉजी संचालित परिवर्तन पर प्रकाश पाड्यो। श्री मोदीए कहु कि भारत अवकाश टेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा में सिद्धिओ द्वारा मानव क्षमता की सीमाओं विस्तरी रही है। टेक्नोलॉजी दरेक माटे सुलभ होवी जोईए તેના પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું કે ભારત કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાને સર્વસમાવેશક તરીકે જુએ છે। તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા ભારત યુરોપિયન યુનિયન મુક્ત વેપાર કરારનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રી મોદીએ કહ્યું કે તે વેપાર, રોકાણ, ટેકનોલોજી, વિનિમય અને પર્યટનને વેગ આપશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પેરિસમાં ફ્રેન્ચ ઉદ્યોગના અગ્રણી નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી, જેમાં ઉત્પાદન, કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા, ટકાઉપણું અને દરિયાઈ માળખાગત સુવિધાઓ પર ચર્ચા થઈ। બેઠકો બાદ આકાશવાણી સાથે વાત કરતા ટોચના અધિકારીઓએ ભારતમાં વધતી જતી તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને દેશ સાથે વધુ ગાઢ જોડાણ માટેની યોજનાઓની જાહેરાત કરી હતી। સાંભળીએ એક અહેવાલ।
3: સેન્ટ કોબા કે ચેરમેન ઓર સીઈઓ બેનવા બેઝા ને કહા કે ભારત એશિયા પ્રશાંત ક્ષેત્ર કે લીએ એક બડે વિનિર્માણ ઓર નિર્યાત કેન્દ્ર કે રૂપ મેં ઉભર રહા હૈ। મિસ્ત્રાલ એઆઈ કે સીઈઓ આર્થર મેન્સ ને કહા કે કંપની ભારતીય ભાષાઓ કે લીએ સહયોગ બઢાને, એઆઈ અનુસંધાન સાઝેદારી કા વિસ્તાર કરને ઓર સંપ્રભુ એઆઈ પર ગહેરા સહયોગ તલાશને કી ઇચ્છુક હૈ। સીએમએ સીજીએમ કે ચેરમેન ઓર સીઈઓ રડોલ્ફ સાદે ને કહા કે ભારત હરિત જહાજ નિર્માણ કે કેન્દ્ર કે રૂપ મેં તેજી સે વિકસિત હો રહા હૈ। મહેશ સોપડે, આકાશવાણી સમાચાર, પેરિસ, ફ્રાન્સ।
2: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છેલ્લા 12 વર્ષમાં ભારતના પરિવર્તનની વાર્તા પણ તેના યુવાનોની વાર્તા છે। પ્રધાનમંત્રીએ કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાનો એક લેખ સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરતી વખતે આ વાત કહી હતી। શ્રી મોદીએ જણાવ્યું, સરકારના વિઝન, કૌશલ્ય, નવીનતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતામાં અભૂતપૂર્વ રોકાણોના માર્ગદર્શન હેઠળ દેશ અમૃત પેઢી માટે તેમની આકાંક્ષાઓને સાકાર કરવા અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવા માટે તકો ઊભી કરી રહ્યું છે। કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું, તમામ રિફાઇનરીઓ પૂરતી ખાદ્ય સામગ્રી સાથે ઉચ્ચ ક્ષમતા સાથે કાર્યરત છે, જ્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો જાળવી રાખવામાં આવી રહ્યો છે। પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના ઘટનાક્રમ અંગે આજે નવી દિલ્હીમાં આંતર મંત્રાલય પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 3 દિવસમાં 1.36 કરોડ એલપીજી સિલિન્ડર બુકિંગ પ્રાપ્ત થયા છે, જ્યારે 1.47 કરોડ સિલિન્ડર ડિલિવર કરવામાં આવ્યા છે।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
2: બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના નિયામક ઓપીશકુમાર શર્માએ જણાવ્યું, માલ્ટાના ધ્વજવાળું એલએનજી કેરિયર દિશા 62,370 મેટ્રિક ટન કાર્ગો સાથે આવતીકાલે સવારે ગુજરાતના દહેજ બંદર પર પહોંચવાની શક્યતા છે। શિક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે 52 ભારતીય સંસ્થાઓએ ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2027માં સ્થાન મેળવ્યું છે। આઈઆઈટી દિલ્હી વૈશ્વિક સ્તરે 118માં ક્રમે ભારતની સર્વોચ્ચ ક્રમાંકિત સંસ્થા રહી। તદુપરાંત આઈઆઈટી બોમ્બે અને આઈઆઈટી મદ્રાસ વિશ્વની ટોચની 200 યુનિવર્સિટીઓમાં સામેલ છે। શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ખુશી વ્યક્ત કરી કે ભારતનો વૈશ્વિક શૈક્ષણિક વ્યાપ સતત વિસ્તરી રહ્યો છે। તેમણે ઉમેર્યું કે આ સિદ્ધિ ભારતના ઉચ્ચ શિક્ષણ માળખાની વધતી જતી શક્તિ અને સંસ્થા નિષ્ણાંતો, સંશોધકો અને વિદ્યાર્થીઓની શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે। આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એઆઈઆર ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/jio અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIRNews_ABADને ફોલો કરશો। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે નવી દિલ્હીમાં ભારત ખાતેના અમેરિકાના રાજદૂત સર્જીઓ ગોરને મળ્યા। સોશિયલ મીડિયા સંદેશમાં શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે બંને નેતાઓએ સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં ખાસ કરીને આતંકવાદ વિરોધી અને માદક દ્રવ્યોના વ્યસન

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चली गई। ओफो कहाँ गई? अभी रोटी यहीं रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई।
1: कौन मम्मी?
0: तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत है, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है?
1: नहीं नहीं मम्मी, जाना है जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए।
0: ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
2: बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको। तुझे भी इसी समय आना था, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
2: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ चीज।
0: देख मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
2: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि टेरी बूट तो बहुत महंगा आवे है, आप कितने रुपए दर्ज लाई हैं?
0: ओफो जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? टेरिबल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
2: अच्छा अच्छा मैं चलूं।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
3: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाल बार कहा कि मेरे बीच में मत बोला करो।
3: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने है।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
3: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे, यही सोचकर मैंने दो दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से तीन खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
3: ओहो तो पागलों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाएगी।
0: तो और क्या करूं, आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब?
3: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा। हाँ आप क्या हैं साहब, देखो जब मिल जाए।
0: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन?
3: देखो भाई मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे रे रे रे, ये क्या कर रही बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
1: डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी,
3: हाँ।
1: देखिए सुई घुस गई।
3: अरे सुई देखो तो, ये रही। नहीं नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं चुभी है, चुभी है। चल चल भाग जाए यहाँ से।
1: मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए।
3: क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है?
0: अच्छी है।
3: और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ उठने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है।
3: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी, और सुन लो अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ से ले नहीं जाएगा।
0: भाई देखिए अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूँ तब बंद कर दीजिएगा, फिर सीखूंगी भी किससे?
3: क्यों मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो, उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
0: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आनी
3: चाहिए। अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप कपड़े दर्जे के सिलने नहीं जाएंगे बस।
2: ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्या लाया है, बड़ी सुंदर लगे हैं। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारी बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
0: हाँ हाँ सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी। हो गया, अब कैसे काटूं?
4: मैं बताऊं बहू जी?
0: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी है जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है। ये पजामा है, पजामा।
4: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी, हम गौर से सुने थे।
0: अच्छा बता आप कैसे काटूं? बड़ा सुने थी।
4: देखिए इसको जोर से कोई तानने, अच्छा फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
0: बेबी बेबी,
1: क्या है मम्मी?
0: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ए ऐसे।
1: अच्छा मम्मी।
0: अरे अरे इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
1: अच्छा,
0: मैं काटती हूँ।
1: काटिए। ये क्या है मम्मी?
0: ये कैसा हो गया?
1: ये तो
0: तिरछा हो गया।
1: ये पैजामा है भला।
0: मैं तुझसे तब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो ऐसा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूँ?
4: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
0: हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
4: यहाँ से दबाइए। हाँ ये आओ।
0: ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है। ए, ए, ए, ए, ए,
4: बहू जी पहिया आगे घुमाओ।
0: नहीं नहीं बेटे घबराओ नहीं, अरे मोहिनी

0: इससे नहीं मोहनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे।
2: मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ। बहू जी, बाबू जी आज लौटेंगे?
0: हाँ आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गे।
0: हाँ एक महीने से तो ऊपर हो गया। मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बाबू जी।
3: बेबी, बेबी, दरवाजा खोल बेबी।
0: आती हूँ। जा मोहिनी देख, वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबू जी नमस्ते। बाबू जी
3: नमस्ते। कहो भाई, सब ठीक ठाक है ना? अरे लीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
0: अरे क्या बताऊं क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटर लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
0: अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए।
3: कौन है? मोहिनी देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
2: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मरे दी, अब शायद ही इम्तान दे पाऊं, कलमी नहीं पकड़ी जाती।
3: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी पकड़ लेगी, जरा ध्यान से पढ़ती रहो, बस इम्तिहान तक सब ठीक हो जाएगा।
1: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
3: मोहिनी नौकरानी गई?
1: हाँ बाबू जी।
3: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
1: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी अभी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
3: मान जाए बुरा, मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही।
1: जी जी जाती हूँ।
0: बेबी देख तो कौन है।
3: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
0: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
3: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भर सिया है, 2 महीने हो गए मशीन है।
2: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
3: क्या कह रही है?
2: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कल कुछ कपड़े सी लूं।
3: सुन लिया, सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कह दे मशीन खाली नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
2: अच्छा।
3: क्या क्या कहा तुमने, यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
0: अच्छा जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खिस तो जाएगी नहीं।
3: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना एक दिन ना पछताओ तो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती। क्या
0: ओ, आप तो
3: ठीक है ठीक है, मेरा क्या है।
2: डैडी डैडी
3: क्या है?
2: एक मिस्त्री आया है, उसने ये पहचान दिया है।
3: क्या है दिखा। नीना ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
0: दुकान पर?
2: हाँ मम्मी गई तो थी, वही जब डॉली ने उसके अंदर सला करा कर पहिया चला दिया था।
0: हाँ हाँ हा, जरा सी खराब हो गई थी।
3: जरा सी खराब हो गई थी, ये देखो ये देखो। मैं पूछता हूँ अब कौन देगा ये रुपए, अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
4: बाबूजी बाबूजी।
3: ओ, ओ, अब कौन है, कौन है भाई?
4: मैं साथ आपके होते आया हूँ, मशीन लाया हूँ।
3: चले आओ अंदर।
4: अच्छा कहाँ रख दूँ बाबूजी?
3: यही मेज पर रख दे। ये मशीन को क्या हुआ?
4: बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी सो थोड़ी सी खराब हो गई।
3: ये थोड़ी सी खराब हुई है?
0: क्या हुआ?
3: हुआ है हमारा सर और क्या, देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2 एक जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए।
0: हैरान की तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
3: ठीक है अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए तुम कहाँ किसके जा रहे हो, उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
4: कहाँ बाबू,
3: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
0: कहाँ जा रहे हैं, सुनिए तो, उनके घर मत जाइए।
3: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना। भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।
5: मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरान, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता नी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।
0: त्रिलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉकस्टार फिल्म से ये गाना, इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

जाने तू या जाने ना फिल्म से सुन रहे हैं आप ये गाना राशिद अली और वसुंधरा दास की आवाज में, अब्बास टायर वाला के बोल या रहमान का म्यूजिक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। जोनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

0: के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लैनेट। आवर पार्टिसिपेशन एट द एआई कंट्री पार्टनर एट विवाटेक 2026 रिफ्लेक्ट दिस वेरी विजन फॉर इंडिया। एआई मीन्स ऑल इंक्लूसिव।
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट गोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया।

0: उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी से आप सुन रहे हो विविध भारती नु सूरत केंद्र 101.1 FM पर। प्रस्तुत छे अमर अमदावाद केंद्र पर थी प्रसारित थयेल प्रादेशिक समाचार नु ध्वनि मुद्रण।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना। सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा, जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए? जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छायागीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूमघट तो जरा ओढ़ो, अहमान का।

0: जवानों कहा अब तुम हो जवान मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सपना

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।